0: पहुंच चुके हैं आठ बजे उस पार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मस्ती मैनेस आप सुन रहे हैं। ऑफकोर्स फ्राइडे मॉर्निंग को और क्या सुनेंगे आप।
1: वो तो है बात।
0: मस्ती मैनेस जहां न्यूज भी होती है।
1: गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए बिल्कुल सही जगह पर आप पहुंचे, रेडियो मस्ती 24/7। और मस्ती मैनेस कैसा चल रहा है फ्राइडे, बताओ अंतरा जी।
0: हाँ जी हाँ जी। आप को जान के बड़ी ऐसे मतलब इरिटेशन सी वापस से होगी, बिकॉज रेणुका हेट्स पीपल जब उनको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज जो है ना वो एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इधर तक तो तुमने कर लिया, इसके बाद कौन करेगा, मतलब कौन करेगा ये, कौन, मैं कुछ ना करूंगी।
1: मुझे ऐसी क्यों फीलिंग हो रही है कि मेरी लग रही है। हाँ
0: नहीं। क्योंकि ये जो बंदी है तो इसने, डायना इनका नाम है, और इन्होंने एक रिव्यू डाला।
1: हाँ
0: ठीक है, एक स्टेक हाउस में ये खाना खाने, आई थिंक उन्होंने वो किया था, पिकअप किया था।
1: हाँ,
0: डिलीवरी अपना। तो बड़ा ही मतलब गुस्से में उन्होंने लिखा कि आई एम एब्सोल्युटली लिविड एंड माय हस्बैंड ड्रोव ऑल द वे टू पिक अप फ्रॉम योर स्टेक हाउस ऑर्डर एंड यू पीपल कैप्स में फॉरगॉट द ब्लूमिंग अनियन, दैट वॉज द ओनली थिंग आई वॉन्टेड। मतलब ऐसा लग रहा था उसका रिव्यू पढ़ के कि वो उधर से चीख ही रही है।
1: हाँ,
0: मतलब वैसे करके टोटली। ये हो गया।
1: हाँ,
0: थोड़े टाइम, कुछ घंटों बाद जो है ना वापस से उसी पे उसका रिप्लाई आता है, एक्चुअली माय हस्बैंड एट द ब्लूमिंग अनियन इन द कार एंड लाइड, आई एम सॉरी एंड आई डोंट नो हाउ टू डिलीट दिस रिव्यू नाउ।
1: मतलब सोचने से पहले ही एक्शन लेना, राइट? कुछ लोग सोचते बाद में करते पहले हैं, ये वो वाले हैं।
0: उनको डिलीट भी नहीं करना आता, लिख तो दिया।
1: लेकिन अच्छी बात है, अब वो वही रहना चाहिए। और यू आर राइट, मुझे ऐसी बातों पे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यू आर वेरी
0: परेशानी
1: होती है। जी, दैट्स व्हाई शी सेड इट एब्सोल्युटली राइट कि रेणुका की आत्मा तड़प रही होगी अब कि ये कैसे लोग हैं।
0: कैसे हो गया।
2: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: प्यार और कमिटमेंट, प्यार और कमिटमेंट अगर एक इंसान के अंदर सच्ची हो तो वो दुनिया की कौन सी दीवार पार नहीं कर सकता. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट एन इंस्पिरेशनल,
2: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती.
1: इसको लगा टेड टॉक शुरू हो गया है यहाँ पर, ये तो इंस्पिरेशन. सीरियसली, रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं आपको ले जाना चाहती हूँ दिल्ली, और दिल्ली के एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास. एक औरत स्वीडन से दिल्ली आई और उसने इस आदमी को बोला दिसंबर 1975 में कि भाई मेरी पोर्ट्रेट बना दे. ठीक है, अब ये जो महानंदिया इस आदमी का नाम था, वो भारत के दलित कास्ट में, अनटचेबल्स जो कहते हैं, वेल अनफॉर्चुनेटली उसमें ही वॉज बॉर्न एंड ही मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग और वॉट एवर, बट एंड ऑल्सो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड दे फेल इन लव. अब शार्लेट तो वापस चली गई स्वीडन. ठीक है, अब भाई को उसकी याद आने लगी कि भैया तो चली गई है, मेरे को बहुत याद आ रही है, बट अब प्लेन की टिकट के पैसे कहाँ है. सो ही सोल्ड वॉट एवर ही हैड, ओके, एंड ही बॉट अ सेकेंड हैंड बाइसिकल. And he started 1977 में. 1977 में वो निकला जनवरी में कि भैया $80 मेरी जेब में, equivalent of $80, okay? And he cycled through Pakistan, Afghanistan, Iran, Turkey and Europe पहुंचा. 6,000 किलोमीटर साइकिल करके उसने रास्ते भर में पोर्ट्रेट्स पेंट करी, कभी कुछ कभी कुछ, so that he could get his food and shelter, right? And he had some money. And then 4 months later, ये भी मुझे बड़े जल्दी लग रहा है, 4 महीने के बाद 28 मई 1977 को वो स्वीडन के अंदर पहुंचा एंड दिस लेडी वाज वेटिंग फॉर हिम. दे गॉट मैरिड, दे हैड टू चिल्ड्रन एंड दे हैव बीन टुगेदर सिंस देन. अब 50 साल हो चुके हैं एंड इस टाइम पर आप सोचिए कि स्टिल दे आर टुगेदर एंड दिस न्यूज इज अप बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दैट दे हैव यू नो शेयर्ड. कैन यू बिलीव इट?
3: आई रिस्पेक्ट
1: भाई साहब,
3: रिस्पेक्ट
1: भाई साहब, मतलब oh my god, I could have never imagined, right?
3: Nacho, nacho, nacho. It's unheard of. This kind of love story is so unheard of.
1: Amazing, amazing. And guys, प्यार करो तो ऐसा करो, नहीं तो रहन दो, कोई जरूरत नहीं करने की. हाँ.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. रेडियो मस्ती 24/7 पर बड़े सारे बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे हैं, लेकिन बातें आई टेल यू इज समथिंग यू जस्ट कैन नॉट मिस.
2: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है.
1: और अभी अंतरा की शक्ल से मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया खबर लाई है वो आपके लिए.
2: लाते हैव नो हैव
1: नहीं no, मुझे no? पता है, इसलिए माय आंसर इज नो. I don't want.
2: No, no, no have. No. Oh, oh, nahi. Have no, Renuka, please.
1: No have, no have.
2: अब इस बार जो है मैंने कहा है मेरे नुका, आप अगर आप जब घूमने जाओ ना बैंकॉक, ये तो बनता ही बनता है. शी हैज टू ट्राई दिस वन.
1: नो खा, कैन नॉट खा, नो खा,
2: हैव ना.
1: आई गो बैंकॉक लॉन्ग टाइम, आई डोंट खा, नो कॉफी.
2: हम प्रेजेंटिंग the latte I am going to talk about. So there is, I don't know why these people are coming up with this weird latte coffee. Coffee को और कितना नहीं सजाना bro, नहीं सजाया हुआ ऐसा चाहिए. So ये एक कॉफी शॉप है जो ये स्पेशल टाइप के लाते सर्व कर रहे हैं. सो द नीचे ग्लास में लाते इज ओके, वो तो जो कॉन्कॉक्शन होता है वही फॉलो कर रहे हैं, बट उसके ऊपर की जो ड्रेसिंग है सजाने के लिए, जी इट इज नॉट द एक्चुअल हेयर, बट इट इज हेयर, बट इट इज नॉट हेड वाला हेयर विच दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट.
1: इट्स हेड एडिबल हेयर. एडिबल हेयर है.
2: Edible hair, but it is not head hair.
1: Understand? It is little, yeah, you know, spiral. It is the ghungrala yes. hair, which obviously you
2: and
1: know,
2: the latte is named also after that.
1: Okay, so it's what's it called? The latte.
2: मैं बता सकती हूँ.
1: Of course,
2: इजाजत है.
1: हाँ, बिल्कुल बताइए.
2: It's called pubic hair latte.
1: देखिए गाना सुनेंगे शीला की जवानी अगला. ऑफ कोर्स आपको अगर जा रहे हो आप बैंकॉक तो हमें जरूर बताओ, बिकॉज हम आपको एड्रेस भेजेंगे अलग से. 9151896 3. वैसे हमारे सोशल मीडिया पर आप जाके जब ये देखेंगे आप लाते बिल्कुल मारना चाहेंगे अंतरा को और कुछ छोड़ देंगे आप पीना.
2: But I don't know. There are people who are queuing up for it.
1: I'm sure.
2: How are they doing it?
1: दुनिया में किसी भी fad को पागलपन की कमी नहीं है. Anything new and it sells. Packaging, baby.

0: விட்டங் Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: भाई साहब, वो लोग जो छुप छुप के अपने लोगों की, अपने परिवार में, अपने स्पाउस की, अपने पार्टनर की बातें रिकॉर्ड करते हैं विदाउट देयर कंसेंट, तो फिर तेलंगाना हाई कोर्ट जो है आपको कह रहा है हेलो, ये इलीगल है.
2: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है.
3: रियली?
1: जी.
3: अच्छा, तो मुझे ये बताया मिलॉर्ड कि अगर कभी ऐसा कुछ हुआ और हमें एविडेंस प्रूफ करने के लिए एविडेंस की जरूरत पड़ी, तो उस केस में क्या करे इंसान?
1: उस केस में उस इंसान को कन्फ्रंट करे और बोले कि देखो बेटा, ऐसा है, तुमने जो किया है वो सही नहीं है. सो सीक्रेटली रिकॉर्डिंग स्पाउसेस कॉल्स विदाउट कंसेंट वायलेट्स द राइट टू प्रिवेसी एंड इट इज इनएडमिसिबल इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. तो अगर आपने रिकॉर्ड कर भी लिया तो भी वो नहीं लिया जाएगा एज एविडेंस. तो फिर रिकॉर्ड करने का फायदा क्या? वैसे ही आगे जाके मिलना बंद हो जाएगा तुम्हारा. जब आप फोन पे हो ना और कोई अगल बगल है तो यू नो व्हाट टू डू. टॉपिक बदल दो. Andhra, how many times, frankly, have you done this in your life? I'm not saying...
3: I haven't done it. But then when I actually think from the point of view of a person of who wants to do it, toh mujhe lagta hai ki situation pe bhi depend karta hai ki, you know, whether you want to do it. You know, kabhi kabhi jo hai na, डाउट होता है वो शक के बिना पे कि एक बार पता तो कर लेते, वैसी वाली सिचुएशन आती है.
1: वो भी है, बट मतलब नॉट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ कि हाँ भाई स्पाउस पार्टनर किसी के सामने, नॉट फॉर दैट, बट इन एनी केस जैसे बचपन में जो मेरे जो बॉयफ्रेंड टाइप होते थे, ठीक है ना, स्कूल के, वो फोन करते थे लड़कियों की आवाज निकाल के, कैन आई टॉक टू रेणुका, ऐसे करके. एंड ऑब्वियसली माय डैड न्यू, यू नो, ये लड़का है जो बन रहा है, बट एनीवे ही यूज्ड टू कॉल मी एंड देन फोन उठा के दे वर ऑब्वियसली वांटिंग टू हियर माय वॉइस काइंड्स, यू नो हाउ इट इज समटाइम्स, बस तुम्हारी आवाज सुनी थी, हाँ वैसा वाला. तो और मैं ऐसे, हाँ मैं कॉपी कर ले आऊंगी होमवर्क, हाँ मतलब पढ़ाकू मेरे से ज्यादा कोई और पढ़ाकू था ही नहीं घर में उस टाइम पर, यू नो, बिकॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बिजनेस व्हेन इट केम टू कॉल्स.
3: या मैंने अपना भाई रख रखा था इस काम के लिए,
1: है ना.
3: लड़का फोन करता था तो उसको पहले बुलाता था एंड देन ही यूज्ड टू पास मी द फोन.
1: ये देखो, रख रखा था, देखो इसने गुंडे बिठाए हुए हैं, ये वैसा वाला. yes. अभी भी इसका वही हाल है. मैंने हाँ गुंडे बिठाए हुए हैं, रखे हुए हैं बाहर.
4: आजा प्यार की हो
5: डील. डील बोले तो
6: हाट हाट
7: हवा यार, सौदा सौदा.
5: ओहो,
4: दोनों डील कर
5: very tight.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: ऐसा सिखाना भी कैसा सिखाना हुआ दोस्त, ऐसे थोड़ी ना होता है।
3: ये जीना भी कोई जीना है लल्लू।
4: This is Musty Madness on Radio Musty 24/7.
3: Radio Musty 24/7 से ही पहचाना आपने, चल रहा है Musty Madness। अंतरा जी, क्या हुआ क्या हुआ?
2: इस स्टूडेंट की व्यथा जो है, इसने जो सबके साथ जो है शेयर किया। आप इमेजिन करो, आप पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है? आप बैठे हुए हो और आप चला रहे हो, आपका इंस्ट्रक्टर आपके बगल में बैठा हुआ है,
3: हाँ।
2: ठीक है, एंड यू नो अच्छा खासा आपका ट्रेनिंग चल रहा है, एवरीथिंग मिड फ्लाइट, ऑल ऑफ अ सडन आपका जो ट्रेनर इंस्ट्रक्टर है वो अपना हेडसेट हटाता है,
3: हाँ।
2: अपनी बिलोंगिंग्स उठाता है एंड अनबकल्स करता है अपना सीट बेल्ट,
3: हाँ।
2: और निकल लेता है,
3: हाँ।
2: एयरक्राफ्ट से
3: है,
2: पैराशूट लेके गॉन, ये बोल के यू नो व्हाट टू डू एंड जंप्स आउट।
3: बट वी डोंट नो व्हाट टू डू, दैट्स द होल पॉइंट। हाउ कैन यू जस्ट लीव? नो वी डोंट। ये क्यों?
2: दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। 22 साल की जो रोजेरियो है, स्टूडेंट पायलट,
3: हाँ।
2: इसका इंस्ट्रक्टर, ठीक है, लियांड्रो, मिड फ्लाइट जो है सब कुछ लेकर, पैराशूट लेके निकल गया ये बोल के कि यू नो व्हाट टू डू एंड जंप्ड आउट। बट पहले उसकी ऑब्वियसली हालत खराब हुई, पूरा मतलब शी पैनिक्ड, देन शी वाज ब्रॉट बैक, अपने आप को वापस लाई, बिकॉज देयर इज समथिंग, सर्वाइवल हैज टू किक इन समवेयर। फिर उसने

0: रेडियो कनेक्ट किया, देन कॉन्टेक्टेड अपने फ्लाइट स्कूल को ऑन द ग्राउंड, देन इन द इंस्ट्रक्टर्स देयर टॉक्ड हर थ्रू इट. शी ब्रॉट द प्लेन डाउन हरसेल्फ, बट देन व्हेन शी पोस्टेड शी वाज लाइक दिस वाज नॉट कूल, दिस वाज नॉट कूल.
1: कांट इमेजिन. धागा ला तो पता नहीं, बट लागली पक्का इन दिस केस. रेडियो 24/7.
0: इफ आई एम देयर इन प्लेस ऑफ द स्टूडेंट, सडनली द इंस्ट्रक्टर इज लाइक ओके यू नो व्हाट टू डू एंड जंप्स आउट.
1: अच्छा मैं जा रहा हूँ. बट एक्चुअली यू नो दिस इज लाइक सेम एज स्विमिंग, राइट? यू पुश द पर्सन इन वाटर, ही विल समहाउ लर्न टू स्विम, यू वॉचिंग फ्रॉम द शोर्स. लेकिन दिस केस इज टू मच मैन. ये तो हवा में था, उसको बचा भी नहीं सकता था कोई. इन केस शी लॉस्ट हर, ओह माय गॉड.
0: हां कि मतलब अब नीचे सूट पर थोड़ी ना कोई जाएगा उसको.
1: नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो न

0: Every instrument tells a story. Every dance has a heartbeat. Every painting begins with one simple stroke. This weekend, discover the Open House 2026 by Singapore Indian Fine Arts Society and join them for a celebration of culture and creativity at Singapore's newest home for Indian arts. Enjoy live performances, hands-on workshops, interactive experiences for the whole family. And if you're joining CIFAS as a new student, you'll receive a $100 registration fee waiver. 18th and 19th July, Saturday and Sunday from 9:30 a.m. onwards at CIFAS 250-252 Middle Road, Singapore. CIFAS Open House 2026. Entry free. Register today at www.cifas.org.
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत कर रही हूँ मैं रेणुका ऑन बिहाफ ऑफ अंटारा ऑल्सो। अगर आप सुन रहे हैं ऑनकोर तो फिर हम इतना बताना चाहेंगे आपको कि आप सैटरडे को शाम से 5 से 8 बिल्कुल हमारे रेडियो मस्ती 24/7 पर लॉग इन कर सकते हैं ना अंतरा, मैंने ठीक बताया ना?
1: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है।
2: हाँ जी, तो भाई अब जो है रेणुका लेकर आने वाली है ड्रम रोल्स।
0: भाई अगली खबर के बारे में मैं बताना चाहूंगी, एक्चुअली सम बैकग्राउंड, सम पीपल यू नो क्या होता है, मरने के बाद भी दे वांट टू बी टॉक्ड अबाउट, मतलब दे सो डेस्परेट टू मेक न्यूज इन दिस वर्ल्ड कि उन्हें लगता है यार मैं मर गया तो फिर तो यार खत्म ही हो जाएगी बात, है ना, फिर क्या फायदा। और कभी कभी हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं जो मेक श्योर कि हम we are being talked about, okay? So this I'm talking about a service which is called Dark Secret, okay? Dark Secret service. $500 लेते हैं और क्या होता है कि जब बंदा मर जाता है, ठीक है, तो उसकी उसके जो जब सारी सर्विस चल रही होती है, राइट, वहां पर एक औरत आती है इन अ फुल इन ब्लैक, बहुत ही स्टाइल में एकदम कपड़े पहनकर एंड इन अ लग्जरी ब्लैक लिमो, ओके, बाहर निकलती है कार से और आंसू बहाती है बड़े ही स्टाइल में बट साइलेंटली, किसी से बात नहीं करती और इससे पहले कि सर्विस खत्म हो जाए वो अपनी ब्लैक लिमोजीन में बैठ के चली जाती है, ओके, नाउ जस्ट इमेजिन। उसका गोल बड़ा ही सिंपल होता है, टू लीव योर लव्ड वंस परमानेंटली, हाँ, परमानेंटली गेसिंग अबाउट अ सीक्रेट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कि भैया ये क्या था ये। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑनलाइन इतना ज्यादा वायरल हो गया कि भैया इट्स अ ब्रिलियंट पार्टिंग गिफ्ट और जस्ट डिलाइटफुली क्रीपी, राइट, कि तुम किसी को बुला के ये करवा रहे हो और बाकी सारे, मतलब हाउ कैन पीपल थिंक ऑफ समथिंग कि भैया वो मर गया, चल उसके ना मेमोरियल पे, उसके मरने पे भी लेट्स मेक अ, कम ऑन, like seriously,
1: why do I find this idea so fascinating?
0: I know, I can well, see that.
1: I find it so fascinating. I mean, मेरे को तो मजा ही आ गया सुन के, ऐसा वाला फील।
0: $500 देने को तैयार है बट she is just wanting to see the look on the faces of the loved ones. ये कौन है? एक बात है, जो रो रहा होगा वहां पर सबसे ज्यादा वो एटलीस्ट चुप तो हो जाएगा क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत मेजर है, राइट, एंड देन मतलब सो सर्विस खत्म होने से पहले द वुमन जस्ट साइलेंटली सिट्स इन हर लिमो एंड गोज अवे, तुम बात भी नहीं कर पा रहे हो उससे।
1: मैं तो मतलब मेरा तो ऐसा चल रहा होगा कि मैं यमराज से खेल भी जो मेरे को 5 मिनट, आई जस्ट वांट टू सी, नहीं जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, बस 5 मिनट
0: टू वॉच।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: आपको याद है पहले की फिल्म्स में बड़ा ऐसे दिखाया जाता था कि कोई स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है और डेथ बेड पे ऑलमोस्ट है और जो उसकी स्पाउस है वो हाथ पीट पीट के नहीं तुम नहीं तुम हाँ, नहीं
3: मुझे छोड़
2: और अचानक से वो रिवाइव हो जाता है ऐसा हाँ? वाला
3: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती मैं कहां हूं ये पूछते हुए रेडियो मस्ती 24/7 पर आप है मस्ती मैडनेस पर और जी हाँ बिल्कुल ऐसी फिल्म में बहुत होती है डॉक्टर साहब ये बच तो जाएंगे ना और सडनली वो हिलता है देखिए देखिए उनकी उंगली हिली उनका ये हुआ उनका वो हाँ हाँ बताओ बताओ
2: भाई जब इस मतलब मेडिकल मिरेकल्स इस तरह के होते रहते हैं देयर इज ऑलवेज साइंस बिहाइंड इट तो ये जो चाइना की हमारी ये जो बंदी है 7 साल जो है इसके हस्बैंड जो है उसके जहां पे फैक्ट्री में काम करते थे तो एक्सीडेंट की वजह से जो उनका एक सिवियर ब्रेन डैमेज हुआ जिस वजह से मतलब पैरालिसिस उनको हो गया ठीक है बहुत ही फेंट रिफ्लेक्स उनका वापस आया बट यू नो वो भी चला गया वापस से फॉर 7 good long years यू नो व्हाट शी डिड
3: क्या
2: कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे
3: व्हाट
2: उसके जो पैर का टो है ना एवरी डे शी यूज टू कम एंड बाइट हिज टो एवरी सिंगल डे फिर एक दिन काफी दिनों के बाइट के बाद देखा कि हल्का सा रिफ्लेक्स आया शी कंटिन्यूड इट आफ्टर 7 long years He actually, she reversed the brain damage somehow with a toe biting. He came out of his paralysis.
3: ये कैसे ये कौन सा था? ये कोई साइंटिफिक तो नहीं लग रहा ये मे बी इरिटेशन से
2: हुआ क्या होगा कि वो एक बार जो है वो होता ना कोई नर्व दैट वन नर्व व्हिच इज काइंड ऑफ प्लेइंग दिस एंड दैट तो वो एक बार उसको फेंट रिफ्लेक्स दिखा फिर उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि इससे कुछ होगा भाई खत्म कर दिया उसका टो काट काट के उसने
3: बट इसे कहते हैं लिटरली गेटिंग ऑन योर नर्व्स राइट सोचो मैं तेरी नसों पर चढ़ जाऊंगी तू बच के कैसे नहीं आएगा वापस देखते हैं तेरे को हाँ वैसे वाला लव इट
2: अपनी सुहाग को बचाया उसने
3: गॉड

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: शादियां चाहे जहां भी बनी हो लेकिन टूट धरती पर सकती हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती मैडनेस।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी।
4: बात तो सही है, आई थिंक धरती पे कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि कोई गारंटी नहीं है बॉस, कोई नहीं है।
2: इवन 4 बजे की शादी है, हम 2 बजे भी तोड़ सकते हैं। ये हाल है हमारा आजकल। हाँ बिल्कुल। सो एक ब्राइड, जी हाँ, शी कॉल्ड ऑफ हर ओन वेडिंग 4 बजे सुबह। क्यों? क्योंकि भाई एक मेंबर फ्रॉम द ग्रूम्स फैमिली, उसने उसके कुत्ते को एक थप्पड़ मारा था ड्यूरिंग द सेरेमनी। ठीक है, सो हुआ बस ऐसा कि इंसिडेंट अभी फरवरी की बात है, ये ब्राइड का जो पेट डॉग है, ही स्टार्टेड बार्किंग ड्यूरिंग द प्री वेडिंग रिचुअल्स चल रहे थे, एंड एक आदमी फ्रॉम द ग्रूम साइड, ही काइंड ऑफ टुक अ स्टिक और उसने कुत्ते को अटैक करके स्टिक से मारा एक्चुअली। सो द ब्राइड इमीडिएटली रिफ्यूज टू कंटिन्यू। उसने देख लिया, वो कहती है कि आई कैन नॉट मैरी इन टू अ फैमिली दैट शोज क्रूएल्टी टू एनिमल्स। और बिल्कुल सही किया मेरे हिसाब से।
4: हां, अग्री अग्री कंप्लीटली,
2: बिकॉज द कन्फ्रंटेशन एस्केलेटेड, उसके बाद फिजिकल क्लैश हो गया दोनों परिवारों में। ये मतलब ये भी सही नहीं था, क्योंकि आई मीन इवेंचुअली यू कांट स्टार्ट फाइटिंग हाथ पैर मार के। पुलिस आई एंड देन सारे के सारे गिफ्ट्स उसी टाइम रिटर्न कर दिए, वेडिंग वाज कैंसल्ड एंड द ब्राइड का जो स्टैंड था इट वेंट वायरल। एंड उसके बाद ऑब्वियसली एनिमल सपोर्टर्स, एवरीबॉडी सेड भाई क्या बात है, क्या बात है। तो भाई पॉइंट ये है कि कहां तक इस बात को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि अगर बहुत सारे समाजों में देखा जाए अंतरा जी, तो लोग बोलेंगे यार शादी तो हो ही रही है, दुल्हन को बोलो चुप करके ये करे। पहली बात तो केओस ही हो जाएगा, दुल्हन इतना बोलती है, ठीक है ना। दूसरा उसके बाद ये हो जाएगा कि ये कुत्ते के पीछे ये कर लिया। तीसरा ये कि बेटा खर्चा तो हो ही चुका है, अब शादी कर लेना यार, मतलब लेट्स नॉट। तुम क्या कहो
4: यार, ये दूसरी सोसाइटी फॉर्म हो रखी है, ये जो कमेंट सेक्शन में आती है। पहले तो हम लोग पहले वाले से जूझ रहे थे, अब ये वाले भी आ गए हैं बोलने के लिए कि कुछ भी, अच्छा कोई भी सिनेरियो हो, बिल फटेगा वैसे भी लड़की पे। सो इट्स ओके, बेटर टेक अ स्टैंड और अपना जो बुरा बनना है उनकी नजरों में बंद। इट्स ओके टू मनो बुरा इन देयर नजर, कोई टेंशन नहीं। मैं आई एम टू विद दिस गर्ल, मैं होती मैं भी यही करती।
2: और मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लग रहा है कि बिकॉज द डॉग वॉज हर पेट, ही प्रोबेबली सेव्ड हर फ्रॉम अ बिगर डिजास्टर। कि ये कैसे खानदान में जा रहे हो।
4: I'm sure.

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalan India Aadi Special Discount Sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalan India Aadi Special Discount Sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalan India Aadi Special Discount Sale.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: वेलकम वेलकम। जी हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 पर। कौन सा शो है भाई, कौन सा शो है, नाम बताओ नाम।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: मस्ती मैडनेस,
0: क्या बात है।
2: आई थिंक मैडनेस तो कहीं और ही हो रखी है रेणुका।
0: बताओ कहाँ।
2: मैडनेस हो रखी है ये जो हमारा 42nd एडिशन ऑफ सैक्सलम इंडिया फैमिली एक्सपो आदि स्पेशल डिस्काउंट सेल जो चल रहा है। आई मीन इट्स टोटल मैडनेस ओनली ना। आप सोचो कि आप एक तो शॉपिंग करने जाओ, ठीक है, वही इन इटसेल्फ इज सो मच एक्साइटिंग। वहां पे जाते जाते आपका ऐसे लक लग जाए और आपका हॉलीडे भी प्लान हो जाए साथ साथ में।
0: टोटली यार, मैं
2: कहती हूं अच्छा नहीं लग रहा
0: एक्चुअली। व्हेन एवर ये साल में जितनी बार भी सैक्सलम इंडिया का फैमिली एक्सपो आता है ना, अब चल रहा है इस टाइम पर 16, 17, 18, 19 जुलाई, ऑब्वियसली अभी भी आपके पास 3 दिन है सो आप जा सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि जब भी आता है इतनी अच्छी बातें बोलते हैं सब लोग कि एक तो डिस्काउंट, मेजर डिस्काउंट मिलता है यहाँ पर, बड़ी सारी शॉपिंग हो जाती है, इट्स लाइक अ फैमिली डे, लोग पूरे पूरे दिन के लिए जाते हैं वहां पर क्योंकि स्टेज पे भी इतनी एक्शन हो रहे होते हैं। और इस बार तो मतलब कितने सारे डेस्टिनेशंस की 2 टिकटें डेली, मतलब दैट्स नॉट अ छोटी थिंग सीरियसली।
2: या
0: अमेजिंग।
2: आई मीन बैंकॉक है, लंकावी है, घोंगजू है, आई मीन
0: टू गुड
2: अमेजिंग प्लेसेस। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जाते जाते फिर उसके बाद अगर वहां से आप ये सब चीजें, शॉपिंग भी हो गई, हॉलीडे भी प्लान हो गया, हाय हाय, मतलब मैं तो कह रही हूँ इससे ज्यादा बड़ी खुशी लेकर बाहर और कुछ हो ही नहीं सकता।
0: मैं भी इतना एग्री ही कर रही हूँ इस बात से। तेरी झलक अशरफी, चप्पलें घिस जाएंगी, टूट जाएंगी, लेकिन आप जाओगे जरूर इसके ऊपर।
2: और ये सारी चीजों की झलक आपको मिलेगी हॉल 5A सिंगापुर एक्सपो में भाई। एक तो एंट्री फ्री सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, मतलब
0: टू गुड,
2: एवरीथिंग इज योर्स।
0: You just have to go to this place, okay? So go to Zack Salam का आदि डिस्काउंट वाला जो चल रहा है एक्सपो में 5A हॉल, जैसा कि अभी भी अंतरा ने बताया आपको, फॉर एवरीथिंग। इट्स लाइक अ फैमिली इवेंट। ऑलराइट, सी यू देयर।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: सबसे ज्यादा मुझे मजे आने लगे हैं थर्सडे शाम को लोगों को जिम में साथ देने में। ओए होए, बड़ा अच्छा। मैं कहती हूँ इस साल का, अभी तक सातवां महीना चल रहा है इस साल का, उसमें मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन आज तक यही रहा है कि टॉप चार्ट्स को फ्राइडे से थर्सडे को शिफ्ट करना।
2: This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
3: दूसरों के लिए तो सही सही, अपने लिए भी।
1: दूसरों मतलब लिसनर्स के लिए बढ़िया है, मेरे सारे चाहने वालों के लिए बढ़िया है, मैं जिसको चाहती हूँ वो सबके लिए बढ़िया है, मेरे अपने लिए बढ़िया है, सिर्फ एक इंसान मुग्धा के लिए बढ़िया नहीं है, एंड दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो मैं सबको बता ही रही थी अंतरा लास्ट टाइम कि हमने जब पर्चियां निकाली यहाँ पर और मुग्धा का टर्न आया तो हमने बोला देखो बहन, अब जो भगवान की मर्जी, राइट, उसमें तुम और हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम फ्राइडे का शो करो। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है कि अगली बार जब पर्चियां निकालेंगे मेरे नाम के बिना तो फिर तुम्हारा भी होगा उसमें नाम, मतलब हूएवर वांट्स टू टेक ओवर नेक्स्ट, आई एम फाइन विद दैट।
3: ओह अच्छा, उसको हमने बताया नहीं सारे पर्चियों में मुग्धा ही लिखा था?
1: नहीं हमने बताया नहीं वाली बात। बहुत बढ़ गई है आजकल, बस ये सिर्फ ये, दिस इज नॉट लव और डव, दिस इज ओनली थर्सडे इवनिंग, दैट्स इट। या All right. Chalo, take care, guys. Bye. Bye, Antra. Have a fantastic weekend.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: एवरी इंस्ट्रूमेंट टेल्स अ स्टोरी, every dance has a heartbeat, every painting begins with one simple stroke. This weekend, discover the Open House 2026 by Singapore Indian Fine Arts Society and join them for a celebration of culture and creativity at Singapore's newest home for Indian arts. Enjoy live performances, hands-on workshops, interactive experiences for the whole family. And if you're joining CIFAS as a new student, you'll receive a $100 registration fee waiver. 18th and 19th July, Saturday and Sunday from 9:30 a.m. onwards at CIFAS 250252 Middle Road, Singapore. CIFAS Open House 2026. Entry free. Register today at www.cifas.org.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
4: Every instrument tells a story. Every dance has a heartbeat. Every painting begins with one simple stroke. This weekend, discover the Open House 2026 by Singapore Indian Fine Arts Society and join them for a celebration of culture and creativity at Singapore's newest home for Indian arts. Enjoy live performances, hands-on workshops, interactive experiences for the whole family. And if you're joining CIFAS as a new student, you'll receive a $100 registration fee waiver. 18th and 19th July, Saturday and Sunday from 9:30 a.m. onwards at CIFAS 250252 Middle Road, Singapore. CIFAS Open House 2026. Entry free. Register today at www.cifas.org.

0: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: your passport to the world every Monday morning. From global headlines to a pinch of Bollywood spice.
1: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out. Josh Mehra.
4: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
5: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
6: ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
7: This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
8: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केम जे सिंगापुर, सारू जे, अरे अखा सिंगापुर, मारू जे। रेडियो मस्ती के बेहतरीन शो में आपका स्वागत है। यह है लेजेंड्स फिर से, और जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल लेजेंड्स के जीवर सीरीज चल रही है, जिसमें आपका ये दोस्त समर आपको रूबरू करवाता है ऐसी ऐसी शख्सियतों से जो एक मुकाम हासिल कर चुकी है, ऐसी हस्तियां जो हम में से कईयों के लिए आइडल हो सकती हैं, उनकी जिंदगी की बातें हमारे लिए इंस्पिरेशन बन सकती हैं। तमाम तरह की चुनौतियां, तमाम तरह की बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स, हर विपरीत परिस्थितियों ने भी इनके हौसले पस्त नहीं होने दिए, और यही वजह है कि आज ये हम सभी के लिए लेजेंड्स हैं, और ये खास शख्स ही हमारे शो के मेहमान बनते हैं। उन्हीं की कहानियां मैं अब तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस लेजेंड के बारे में बात करेंगे, वो एक वुमेन सुपर कॉप रह चुकी हैं, एक कड़क मिजाज की पुलिस ऑफिसर। जी हाँ, ऐसा कड़क मिजाज कि उनका यही अंदाज कभी तारीफों की सुर्खियां बना तो कभी कंट्रोवर्सीज की वजह भी। स्कूल कॉलेज के टाइम में एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर ही रह चुकी हैं, तो वहीं वो एक सोशल वर्कर और रिफॉर्मिस्ट के किरदार में भी दिख चुकी हैं। कुछ किताबें लिखी हैं उन्होंने, एक अच्छी राइटर भी हैं, और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमा चुकी हैं। कुछ समझ में आया मैं किसकी बात करवा नहीं, कैसे सही, कैसे सही, कैसे सिंगापुर। चलिए मैं ही तारुफ करवा देता हूँ, शायद आपके जहन में आ गया है। आज की हमारी लेजेंड है, इनका सैल्यूट करके स्वागत कीजिएगा। ये है फर्स्ट इंडियन फीमेल आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। जी हाँ, आज की हमारी लेजेंडरी शख्सियत हैं डॉक्टर किरण बेदी। मैंने कहा था ना कि आज की हमारी लेजेंड ऐसी हैं जिनका नाम जहन में आते ही कड़क मिजाज सुपर कॉप की तस्वीर सामने आ जाती है। किरण बेदी जी की जिंदगी की किताब खोलेंगे और उनकी लाइफ और करियर में आए एक से बढ़कर एक दिलचस्प किस्सों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेजेंड्स अचीवर सीरीज इन बेहतरीन गानों के साथ। वापस लौटकर जरूर आएगा, क्योंकि किरण बेदी की कहानी समर की जुबानी आप सुन रहे हैं, और इसमें बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई है, कहानी शुरू करेंगे बस इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

कसमें, बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: है चोरा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक के करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से
2: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
3: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज और आप प्यार से मुझे समर लेजेंड्स वाले ही कहते हैं। और अचीवर सीरीज में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पहाड़ों का सीना चीर कर दूध की नदियां बहा दी। जी हाँ, ऐसी शख्सियतों की कहानियां जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। किरण बेदी जी की आज हम बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। इससे पहले कि हम डॉक्टर किरण बेदी जी की पुलिसिया जिंदगी या यूं कहें सुपर कॉप वाले किस्सों के बारे में बात करें, बेहतर रहेगा ना कि पहले थोड़ा उनकी फैमिली और बचपन के बारे में जान लें, है ना? तो नन्ही सी किरण ने जन्म लिया साहब अमृतसर के रहने वाले प्रकाश पेशावरिया और प्रेम लता जी के घर में। तारीख थी 9 जून 1949, June 9, 1949। पेशावरिया फैमिली में टोटल 4 बेटियों ने जन्म लिया जिसमें किरण दूसरे नंबर की रही। चारों बेटियों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा कि लगभग हर लड़की का बचपन रहता है, किरण जी का भी बचपन कुछ वैसा ही गुजरा। स्कूल और कॉलेज तक तो सब कुछ नॉर्मल कह सकते हैं। घर पर भी बेटियों को पिताजी ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया, बहुत डिसिप्लिन में रहते थे और एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी। यही वजह है कि किरण जी के फादर मिस्टर प्रकाश पेशावरिया उनके रोल मॉडल हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है। और वैसे उन दिनों में किसको मालूम था कि ये छोटी सी बिटिया रानी आगे चलकर परिवार का नाम इतना रोशन करेगी। वेल, शुरुआती एजुकेशन अमृतसर के ही कॉन्वेंट स्कूल से उनकी हुई जहां वो नेशनल कैडेट कॉर्प यानी कि एनसीसी का हिस्सा भी रही। बस यहीं से देश की सेवा करने के जज्बात उनके दिलो दिमाग में बढ़ते चले गए और इसी दौरान उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स में बैचलर्स डिग्री भी पूरी की, ग्रेजुएट हो गई वो, और फिर पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया। उन्होंने फिर पीएचडी भी की, ये खैर बाद की बात है, पर उन्होंने पीएचडी की नशाखोरी और घरेलू हिंसा टॉपिक पर, जो आगे जाकर उनके बहुत काम आई। और ये आपको मैं बता दूं कि हमारी ये लेजेंडरी शख्सियत आउटराइट स्कूल से ही अव्वल दर्जे में पास होती रही। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई में वो टॉप क्लास थी। तो कुल मिलाकर जिंदगी यहाँ पर एक साधारण जिंदगी की तरह चल रही थी, ज्यादा कहानी में कोई ट्विस्ट आया नहीं। ट्विस्ट आया जब किरण ने पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की। फिर तो ऐसे ऐसे इतने ट्विस्ट आए कि पूछे ही मत। सभी ट्विस्ट के किस्से कहानियां पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनाऊंगा, कहीं जाएगा मत, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी इसमें ऐसे बहुत सारे किस्से आने बाकी हैं जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे ओ तेरी, क्या ऐसा भी कभी होता है। तो फिलहाल के लिए तो आप एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत गाने समर के साथ। आप रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, ये है लेजेंड्स के अचीवर सीरीज जहां आज हम बात कर रहे हैं किरण बेदी जी की।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक लेजेंड्स अचीवर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी की। मैं हूं समर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। म्यूजिकल ब्रेक से पहले मैंने कहा था आपसे कि किरण जी की जिंदगी में एक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्विस्ट आए जब उन्होंने पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की। सबसे पहला ट्विस्ट तो तभी आ गया था जिस साल यानी कि 1972 में वो आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुई थी। यही वो साल था जब किरण बेदी जी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को बाकी की जिंदगी के लिए अपना हम सफर बना लिया था, जहाँ ब्रिज बेदी जी के साथ उन्होंने शादी की। और ये जो शादी थी ना वो भी किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं थी। वैसे आप बताइए, कभी सुना है आपने कि कोई रात के 2 बजे भी शादी कर सकता है? बताइए कभी कभी कभी नहीं, मतलब कई बार शादियां जो होती हैं उसमें रात को 2 बजे फेरे पड़ते हैं। लेकिन साहब ये हकीकत है, किरण बेदी जी ने ब्रिज बेदी जी के साथ रात के 2 बजे शादी की थी। इस बात को खुद किरण बेदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है। दरअसल उनकी जो मदर इन लॉ थी ब्रिज जी की मम्मी, उन्होंने ही रात 2 बजे शादी के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त होने के बारे में सजेस्ट किया था। बस फिर गया था, वही हुआ। किरण से इसी मुहूर्त में शादी करने के लिए ब्रिज बेदी साहब लेट नाइट पहुंच गए किरण जी के घर। वो उन्हें मंदिर ले जाकर शादी करना चाहते थे। ऐसे में ये दोनों भागकर पहुंचे एक टेंपल में। अब पुजारी तो भैया गहरी नींद में सो रहा था, तो जैसे तैसे पुजारी जी को जगाया गया, पर वो इतनी रात को शादी करवाने को राजी नहीं थे। पुजारी जी ने कहा कि भैया इस वक्त मंदिर बंद रहता है, भगवान भी सो रहे हैं, आप घर जाइए, सुबह आइएगा, फिर देखेंगे। बस फिर क्या था, इतनी मुसीबतों में ये दोनों भागकर तो आए ही थे, तो दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और हो गई शादी। अगली ही सुबह किरण बेदी जी एज यूजुअल ड्यूटी पर थी। और वैसे इस कपल ने 3 दिन बाद सबको बता दिया, बाकायदा सभी के लिए रिसेप्शन भी दिया, जिसके बाद वो नए घर में चली गई। तो है ना, पहला ही ट्विस्ट बड़ा मजेदार, पुलिस ज्वाइन करते ही ट्विस्ट। पर उस वक्त तो किरण जी को भी इल्म नहीं होगा कि आगे भी उनकी लाइफ इतनी ही चैलेंजिंग होने वाली है। मैंने बताया था ना अभी आपको, उन्हें लाइफ और अपने करियर में कई और ट्विस्ट का सामना करना पड़ा या झेलना पड़ा, यूं कह सकते हैं आप। बताऊंगा इन सब के बारे में, आप तो बस सुनते रहिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009। मैं हूं सवन, आपके साथ लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में आज बात हो रही है किरण बेदी जी की।

धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ। पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक, लेजेंड्स अचीवर सीरीज जारी है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर और आप हैं मेरे यानी समर के साथ। तो हम बात कर रहे थे किरण जी के पुलिस करियर की, जिसमें एंट्री के साथ ही ट्विस्ट आया और उनकी शादी भी हो गई। वैसे आपको बता दूं कि किरण जी अपने टाइम में एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर भी रह चुकी हैं, कई खिताब जीते उन्होंने। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि वो अपना करियर स्पोर्ट्स में ही बना लेंगी और दरअसल वो टेनिस कोर्ट ही था जहां पर किरण जी को अपना पहला प्यार मिला था। जी टेनिस से तो था ही, लेकिन टेनिस खेलते खेलते ही वो ब्रिज साहब को अपना दिल दे बैठी थी। इसके बाद बात आगे बढ़ी और आगे क्या हुआ ये तो मैं आपको बताई चुका हूँ। रात के 2 बजे भाग कर शादी करी मंदिर में। वेल वेल वेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टर बेदी आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके नहीं होने के बाद भी किरण जी ने हिम्मत नहीं हारी। वो पुलिस महकमे को सुधारने, उसे करप्शन मुक्त करने और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के मकसद से काम करती रही। वो पुलिस करियर को सिर्फ जॉब की तरह नहीं लेती थी, बल्कि पुलिस करियर को उन्होंने देश सेवा माना और यही वजह रही कि उनके इन मकसदों के आगे एक की भी नहीं चली, सीनियर ऑफिसर्स तक की भी नहीं। अब आप सोचिए, उस दौर में जब पुलिस को बेसिकली मेल डोमिनेटेड माना जाता था, तब कोई लेडी और वो भी इंडिया की पहली लेडी आईपीएस ऑफिसर बनकर आए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो मेल पुलिस ऑफिसर्स को अखरा ही होगा। बहुत सारी दिक्कतें भी उन्होंने पेश की होंगी उनके रास्ते में। वेल, करीब 35 साल का उनका ये पुलिसिया करियर रहा होगा। किरण बेदी बेदाग रही, उनके दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं लगा सका। हाँ, सी से करप्शन नहीं, लेकिन सी से कॉन्ट्रोवर्सी जरूर उनके दामन से चिपकी चिपकी घूमती रही। तभी तो हर बार कुछ ना कुछ हर पोस्टिंग में हो जाया करता था और उनका तबादला यानी ट्रांसफर कर दिया जाता था। खैर, अभी मैं यहाँ एक और म्यूजिकल ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि जब लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा कि किस तरह से इस जाबाज फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर का सामना इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ। बड़ा मजेदार किस्सा, जाएगा नहीं। फिलहाल ये ब्यूटीफुल गाने आ रहे हैं आपके लिए रेडियो 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग। अच्छे लगते हैं आप मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते रहिए।

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India are the special discount sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India RD special discount sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India RD special discount sale.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
4: सुस्वागतम, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हुआ दोनों बाहें फैलाकर समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव से लेजेंड्स अचीवर सीरीज में आज बात हो रही है कड़क मिजाज बॉय कट लुक वाली पतली दुबली सी लेकिन जाबाज स्टाइलिश लेडी सुपर कॉप किरण बेदी जी की। मैंने आपको बताया था ना कि इस दबंग लेडी कॉप के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज चिपक कर चलती रही। शुरुआत तब हुई जब वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में DCP थी। तब तो उनके काम से उन्हें किरण बेदी नहीं बल्कि क्रेन बेदी के नाम से पहचाना जाने लगा था। जी हाँ, वो गाड़ियों को नो पार्किंग से उठाने वाली क्रेन होती ना, बस उस क्रेन को जोड़ते हुए उन्हें नाम दिया गया क्रेन बेदी। दरअसल उन्होंने काम ही ऐसा शुरू करवाया था, जहाँ कहीं भी बेतरतीब तरीके से किसी की गाड़ी खड़ी होती थी बस उसे क्रेन लगाकर उठवा लिया जाता। हाँ, लेकिन शुरुआत में उनके इस तरीके का दिल्ली में विरोध भी बहुत हुआ। ये छोड़िए, दिल्ली में ट्रैफिक सुधारने की किरण बेदी पर ऐसी धुन सवार थी कि एक बार तो मैडम जी ने प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा, उसे तक उठवा दिया। सही में बहुत बवाल हुआ था। अब सोचिए, जो प्राइम मिनिस्टर की कार ही उठवा ले वो कितना दबंग होगा। ऐसा ज्यादातर फिल्मों में ही दिखता है ना, पर ये सब असल में हुआ है। एंड दैट बिकेम हिस्ट्री इंडिया में, तो क्या शायद वर्ल्ड में उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब किसी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पार्किंग वायलेशन के चलते क्रेन से उठा ली गई हो। बस तब से वो और ज्यादा सुर्खियों में आ गई। हालांकि क्रेन बेदी, मेरा मतलब है किरण बेदी जी की, इस काम की तारीफ भी हुई। खुद इंदिरा गांधी जी ने पब्लिकली कहा था कि इस देश को आज ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है जो सही को सही तरीके से करने का दमखम रखते हैं। वेल, ट्रैफिक पुलिस में उनका काम वाकई ग्राउंड पर दिखाई दिया। दिल्ली में जब एशियन गेम्स का बड़े लेवल का इवेंट हुआ, तब भी 1982 की बात है, तब भी उनके ट्रैफिक मैनेजमेंट की बहुत तारीफें हुई। सही मायने में दिल्ली के लोगों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस उन्होंने सुधार कर रख दिया था। फिर यहाँ से किरण बेदी जी और भी कई पोजीशंस पर रहीं। हाँ, एक तिहाड़ जेल की हमेशा चर्चा होती है जब भी किरण बेदी जी का नाम आता है। तो ऐसी जेल जहाँ हिंदुस्तान के सबसे डेंजरस किस्म के क्रिमिनल्स बंद रहते हैं, तिहाड़ जेल। सोचिए, ऐसी जेल में एक लेडी ऑफिसर की पोस्टिंग, क्या कुछ रहा उनकी इस पोस्टिंग के दौरान, बताऊंगा आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की लेजेंड्स अचीवर सीरीज में आप सुन रहे हैं किरण बेदी की कहानी समर की जुबानी। सुनते रहिए

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ समर, और लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं इंडियाज फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी के बारे में। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में डीसीपी रहते हुए किरण जी की दबंग छवि से लगभग पूरा देश वाकिफ हो चुका था। बताते हैं कि तब पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को उनके काम करने के तरीकों पर एतराज था। कभी कभार ऐसी ही बातों को लेकर आईएएस लॉबी से भी उनकी तकरार रही है। तो कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को किरण बेदी जी के काम करने के स्टाइल पच नहीं रहे थे। वजह भी थी, और वो ये कि किरण बेदी जी को जो सही लगता था ना, बस वो वही करती थी। फिर वो किसी की नहीं सुनती थी, अपने सीनियर्स तक की भी नहीं। वैसे इसके पीछे का रीजन भी उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज के दौरान बताया है। वो कहती हैं कि वो हमेशा से ही फील्ड में रहकर काम करने वालों में से रही हैं। कुर्सी से चिपक कर कभी उन्होंने काम किया नहीं, और इसी वजह से वो जानती थी कि मौके पर कहां किस तरह की वाकई में दिक्कतें हैं। ऐसी दिक्कतें जिन्हें बंद कमरों में बैठे अफसर नहीं समझ सकते। बस ऐसी ही बातों को लेकर उनका सीनियर ऑफिसर से कभी कभी थोड़ा बहुत पंगा हो जाता था। बाद में सीनियर्स को अपने से जूनियर किरण जी की बातों को मानना भी पड़ता था। एंड एट द एंड ऑफ द डे किरण जी के डिसीजंस रंग भी लाते थे, बट फिर भी उनके लगातार ट्रांसफर होते रहे। कभी इधर कभी उधर, लंबे टाइम तक एक जगह टिककर वो कभी नहीं बैठी, या यूं कहें कि बैठने नहीं दिया। हाँ, पर वक्त वक्त पर उन्हें प्रमोशन भी मिलता रहा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चीफ के बाद उन्हें नई जिम्मेदारी मिली इंडिया के सबसे खतरनाक तिहाड़ जेल की, जहाँ उन्हें आईजी प्रिजन के ओहदे पर भेजा गया। वैसे आपको एक बात और बता दूं मैं, कि जो पुलिस में जेल की ड्यूटी होती है ना, डिपार्टमेंट में उसे पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। हर कोई बचता है यहाँ लगने से। पर किरण जी जरा भी बुरा नहीं मानी और जरा भी डरी नहीं। उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया, और ये भी एक हिस्ट्री ही है कि वो तिहाड़ जैसे खतरनाक जेल की पहली लेडी ऑफिसर रही। तिहाड़ में ड्यूटी आसान नहीं थी। जेल कैंपस के पहले इंस्पेक्शन में उन्हें ये क्लियर हो गया था कि यहाँ नौकरी करना आसान नहीं होगा। क्या कुछ माहौल मिला हमारे आज के लेजेंड को, वहाँ पर ये सब बताऊंगा आपको। लेकिन एक और खूबसूरत से म्यूजिकल ब्रेक के बाद रेडियो मस्ती पर मैं हूँ समर आपके साथ, और शो फिलहाल चल रहा है लेजेंड्स की अचीवर सीरीज, जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किरण बेदी जी की। स्टे कनेक्टेड।

बन के रहेगा।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: मुझे मालूम था आप कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि मैं किरण बेदी जी की कहानी आपको सुना रहा हूँ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ। तो हम आपको बता रहे थे कि इंडिया की पहली लेडी आईपीएस ऑफिसर अब पहुंच चुकी थी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में। उस वक्त लगभग 7,000 कैदी थे वहाँ और लगभग हर कोई खूंखार वाला क्रिमिनल। बहरहाल अब जब किरण बेदी जी ने यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पहली विजिट की जेल कैंपस की तो वो नजारा देखकर हैरत में रह गई। जगह जगह गंदगी के ढेर, क्रिमिनल्स में भी जैसे पुलिस का कोई डर ही नहीं। बैरिक्स में नियमों के अगेंस्ट रात रात भर प्रिजनर्स जागते रहते थे। जब पता लगाया तो कईयों को अलग अलग तरह के नशे की लत होने का पता चला। मतलब हाल बहुत खराब था इस जेल का। और वो तो छोड़िए, जहाँ इन प्रिजनर्स के लिए खाना बनता था उसे तो वो कहती हैं कि वो नजारा तो बताया तक नहीं जा सकता। उन्होंने लिटरली इस विजिट के बाद माना कि यहाँ जंगल राज चल रहा था, इसमें जीरो से स्टार्ट करके सुधार किए जाने की दरकार है। बस फिर क्या था, उन्होंने इस टास्क को मिशन बनाया और शुरू हो गई मुहिम। कुछ वक्त लगा पर जेल का नक्शा और प्रिजनर्स का ढर्रा सब कुछ बदल कर रख दिया इस लेडी ऑफिसर ने। नई मैडम के तेवर देखकर जो प्रिजनर्स जेल के नियम कायदे तोड़ते दिखते थे ना, वो तक पटरी पर आ गए। वेल उस समय वाकई सीनियर सोचते यही होंगे कि जो काम वो नहीं कर पाए एक लेडी ने कर दिखाया है ना। वैसे जबान से सही नहीं पर दिल से वो किरण जी के काम को सलाम तो ठोकते ही होंगे, है कि नहीं, क्या कहते हैं आप। और हाँ, एक नया काम और करवाया उन्होंने यहाँ तिहाड़ में। प्रिजनर्स से कम्युनिकेशन सही हो इसके लिए जेल के अंदर ही सजेशन बॉक्स रखवाया गया जहाँ कोई भी प्रिजनर उन तक अपनी बात पहुंचा सकता था। वाओ, दैट वाज ग्रेट। और जिस बात के लिए उनकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई वो थी तिहाड़ जेल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की शुरुआत, जिसमें योगा क्लासेस से लेकर स्पिरिचुअल क्लासेस तक रही। प्रिजनर्स तक अच्छी अच्छी बुक्स पहुंचाई गई। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस जेल को एक आश्रम में बदल दिया था। है ना कमाल की बात। इस बात से शायद आपको एक फिल्म याद आ रही होगी, दो आंखें बारह हाथ। जी हाँ, उस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट भी ऐसे क्रिमिनल्स को सुधार कर उनको मेन स्ट्रीम सिटीजन बना देता है। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, पर फिलहाल तो एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। आप इंजॉय कीजिए इसे, मैं जल्दी से लौट कर आऊंगा और इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate!
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right! My name is Anthony Gonsalves.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: सुस्वागतम स्वागत वेलकम बैक। मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर सीरीज और आज बात हो रही है दबंग लेडी ऑफिसर किरण बेदी जी की। मैंने आपको बताया था ना कि इस दबंग लेडी ऑफिसर के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज कदम मिलाकर चलती थी। वैसे सबसे ज्यादा गरमाया था मामला जिसमें जबरदस्त वाला बवाल हुआ था, वो था ईयर 1988 में, जहां जब दिल्ली पुलिस के एक वकील को यानी कि लॉयर को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया गया था। इस बात का लॉयर कम्युनिटी ने जबरदस्त विरोध किया था और तब किरण जी डीसीपी नॉर्थ हुआ करती थी। इस बात पर ऐसा हंगामा बरपा कि पूरा का पूरा लॉयर्स एसोसिएशन किरण बेदी के अगेंस्ट खड़ा हो गया। बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब कहते हैं कि किरण बेदी के ऑर्डर पर लॉयर्स के एक बड़े प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। बहुत तूल पकड़ा मामले ने, कह सकते हैं कि लॉयर्स वर्सेस पुलिस हो गया था मामला। तब लॉयर्स ने किरण जी को हटाने की डिमांड पर मास स्ट्राइक तक कर डाली। ऐसे में आखिरकार डिपार्टमेंट को उनका ट्रांसफर करना पड़ा। हालांकि आज तक बेदी जी मानती हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, सभी कुछ नियम कायदे से किया जो लॉयर्स को आखिर गया। बहरहाल और भी ऐसे कई वाक्य रहे जब किरण बेदी की सख्ती और उनका तेज तर्रार काम करने का तरीका वहां के लोगों को रास नहीं आया, जिससे कि बवाल की स्थिति पैदा हो गई। पर ये हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए स्ट्रिक्टनेस तो जरूरी होनी ही चाहिए भाई, है कि नहीं? कुछ को ये नागवार गुजरती है। इसी वजह से उनकी चाहे गोवा पोस्टिंग रही हो या चंडीगढ़ या मिजोरम, कॉन्ट्रोवर्सी हमेशा साथ रही। पर जैसा कि मैंने बताया था, मुश्किलों और चुनौतियों से टकराने में शायद किरण बेदी जी को कुछ ज्यादा ही मजा आता था। खैर, अभी यहाँ एक और म्यूजिकल ब्रेक की बारी है, बने रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के साथ। मैं हूँ समर, सुना रहा हूँ किरण बेदी जी की कहानी।

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Aadi special discount sale. Win two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Aadi special discount sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India Aadi special discount sale.
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. टाइम टू रेज द बार. मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
2: Radio Masti 24/7 live par. Samar ke saath, aap sun rahe hain Legends Achievers.
3: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. आप सुन रहे हैं यह सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव बॉलीवुड हिंदी रेडियो सिंस 2009 और मैं हूं समर. लेकर एक अचीवर की कहानी लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में बात हो रही आज किरण बेदी जी की. किरण बेदी जी जितनी ब्रेव और तेज तर्रार थी उतनी ही वो ईमान की पक्की भी थी. मेरा मतलब यह है कि जहां उन्हें लगता था कि नाइंसाफी हो रही है उसे वो बर्दाश्त नहीं करती थी और शायद यही वजह रही कि उन्होंने इतने लंबे पुलिस करियर को एक झटके में ही छोड़ दिया. जी हाँ, सर्विस के दौरान एक वाक्य ऐसा रहा कि उन्होंने हाथों हाथ अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया. अब सोचिए जरा क्या हुआ होगा. मानते हैं ना कि कोई ना कोई जरूर ऐसी बात हुई होगी, ऐसी कोई पीड़ा रही होगी उनके दिल में, तभी उन्होंने ऐसा कदम उठाया है ना. चलिए मैं बताता हूँ हुआ क्या था. दरअसल ये बात है 2007 के आसपास की, जब जी जान से सेवाएं देने वाली किरण बेदी का नाम दिल्ली कमिश्नर के लिए टॉप पर था. यहाँ तक कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ने इसके लिए बाकायदा अपनी सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी थी, बट होम मिनिस्टर ने उस वक्त उनकी जगह उनसे जूनियर को इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया. जी हाँ, किरण जी की जगह उस वक्त YS डडवाल नाम के ऑफिसर को दिल्ली कमिश्नर का जिम्मा दे दिया गया. बस फिर क्या था, ये बात किरण जी को ऐसी नागवार गुजरी कि स्वाभिमानी किरण बेदी जी ने VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया. तब वो इंडियन पुलिस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो की DIG पोस्ट पर थी. वैसे नौकरी को अलविदा कहते वक्त किरण जी ने कहा था कि वो अपना समय समाज सेवा और लेखन को देना चाहती हैं, और हुआ भी वही, वो सोशल सर्विस करने लगी और आज तक वो कई किताबें भी लिख चुकी हैं. तो सब कुछ मैं बताऊंगा उनके बारे में जितना कुछ मेरे पास और है, बहुत कम वक्त बचा है. लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आज की होगी आखिरी मुलाकात. आप जरूर मिलने आइएगा मुझसे. मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर.

सावन पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक रेडियो मसी पर लेजेंड्स अचीवर सीरीज में आज बात हो रही है एक ऐसी एक्स लेडी सिंघम की जिनका नाम सुनते ही एक जबरदस्त, एक कड़क और बेदाग छवि वाली लेडी सुपरकॉप की तस्वीर जहन में आ जाती है। जी हाँ, आज बात हो रही है किरण बेदी जी की। पूरी शिद्दत के साथ खाकी वर्दी पहनकर और हर मुश्किलात हर चुनौतियों का सामना करते हुए कई सालों तक उन्होंने देश की सेवा की। वैसे पूरे करियर में अपनी ईमानदारी और देश सेवा के जज्बे को देखते हुए उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें क्या नहीं मिला, प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड, इटली का विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, एशिया रीजन अवार्ड, महिला शिरोमणि अवार्ड, प्राइड ऑफ इंडिया जैसे ढेर सारे सम्मान उन्हें मिले। पर हाँ, जो सबसे खास था वो 1994 में उन्हें मिला एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रेमन मैक्सेसे पुरस्कार। वैसे आप सभी को याद तो होगा ही, वो अन्ना हजारे की टीम में भी लीडिंग पोजीशन में दिखाई दी थी। वक्त गुजरा तो पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमा लिया। पर देखिए, पॉलिटिक्स हर किसी को रास नहीं आती। बात 2015 की है जब उन्हें दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपना पहला इलेक्शन हार गई। है ना उनका अब तक का शानदार सफर। वाकई सलाम है ऐसे जज्बे को। वेल, आज के लेजेंड्स में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी ही एक और कामयाब शख्सियत से। तब तक के लिए समर को दीजिए इजाजत और हाँ, करते जाइए कुछ वादे। कहिए क्या आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. DJ.

Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक
0: अर्जुन आएंगे।
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
4: एवरी इंस्ट्रूमेंट टेल्स अ स्टोरी। Every dance has a heartbeat. Every painting begins with one simple stroke. This weekend, discover the Open House 2026 by Singapore Indian Fine Arts Society and join them for a celebration of culture and creativity at Singapore's newest home for Indian arts. Enjoy live performances, hands-on workshops, interactive experiences for the whole family. And if you're joining CIFAS as a new student, you'll receive a $100 registration fee waiver. 18th and 19th July, Saturday and Sunday from 9:30 a.m. onwards at CIFAS 250252 Middle Road, Singapore. CIFAS Open House 2026. Entry free. Register today at www.cifas.org.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस
2: का। अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra. Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे Every instrument tells a story. Every dance has a heartbeat. Every painting begins with one simple stroke. This weekend, discover the Open House 2026 by Singapore Indian Fine Arts Society and join them for a celebration of culture and creativity at Singapore's newest home for Indian arts. Enjoy live performances, hands-on workshops, interactive experiences for the whole family. And if you're joining CIFAS as a new student, you'll receive a $100 registration fee waiver. 18th and 19th July, Saturday and Sunday from 9:30 a.m. onwards at CIFAS 250252 Middle Road, Singapore. CIFAS Open House 2026. Entry free. Register today at www.cifas.org.
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 a.m. onwards only on रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे।
2: 2026 by Singapore Indian Fine Arts Society and join them for a celebration of culture and creativity at Singapore's newest home for Indian arts. Enjoy live performances, hands-on workshops, interactive experiences for the whole family. And if you're joining CIFAS as a new student, you'll receive a $100 registration fee waiver. 18th and 19th July, Saturday and Sunday from 9:30 a.m. onwards at CIFAS 250252 Middle Road, Singapore. CIFAS Open House 2026. Entry free. Register today at www.cifas.org.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
4: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live

0: On Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ।

चिंता दिशा दिशा तनाव बेरहम नोचिति खरोचिति ये सोच जख्म।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
2: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
3: ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
4: This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
5: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
6: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
7: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: यू नो वॉट, एक रिसर्च होनी चाहिए फ्राइडे पर, क्योंकि मंडे से थर्सडे तक ना लोग कहते हैं यार बहुत काम है, एंड फ्राइडे की शाम होते ही वही लोग कहते हैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ मैं, कहीं जाना नहीं। हेलो सिंगापुर, वेलकम टू मस्ती हैंग आउट 2.0 और मैं हूँ आपके साथ आरजे मुग्धा तिरकित था। तो अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं या फिर बस ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं तो आज जल्दी सो जाऊंगा, इट्स अ ट्रैप। पहले बता देती हूँ, हम दोनों को पता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज वीकेंड में एंटर हो चुके हैं भाई, ये चैट मैं और आप हम सब। और जब वीकेंड आ ही गया है तो उसका वेलकम भी हम फुल बॉलीवुड स्टाइल में करेंगे एज ऑलवेज। आपको पता है फ्राइडे का ये शो पिछले कुछ वक्त से बहुत ही डिफरेंट जा रहा है ना। हम बहुत सारी बातें करेंगे पर कोई हैवी बातें नहीं करेंगे, कोई ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। बातें वो होंगी जो आपके फेस पर स्माइल ले आए, बातें वो होंगी जो आपका मूड बनाए और आपके इस मूड को थोड़ा और ऊपर ले जाए। शुरुआत करते हैं कैसे ट्रैक के साथ, जो बिल्कुल उस दोस्त की तरह है। वो रूम में एंटर होता है और कहता है चलो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सीन तो अब बना है, एंड दैट सॉन्ग इज मैं आपको बताऊंगी नहीं सीधा सुनाऊंगी, एंड हियर कम्स द फ्राइडे फीवर। मूड सेट है बॉस, आगे बढ़ेंगे जोरदार तरीके से।

0: Every instrument tells a story. Every dance has a heartbeat. Every painting begins with one simple stroke. This weekend, discover the Open House 2026 by Singapore Indian Fine Arts Society and join them for a celebration of culture and creativity at Singapore's newest home for Indian arts. Enjoy live performances, hands-on workshops, interactive experiences for the whole family. And if you're joining CIFAS as a new student, you'll receive a $100 registration fee waiver. 18th and 19th July, Saturday and Sunday from 9:30 a.m. onwards at CIFAS 250252 Middle Road, Singapore. CIFAS Open House 2026. Entry free. Register today at www.cifas.org.
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: मैजिक, यू नो फ्राइडे का सबसे बड़ा मैजिक क्या है? ऑफिस में जो बंदा मंडे को कहता है मुझसे बात मत करना यार, वो ही फ्राइडे की शाम में कहता है चलो और कौन कौन आ रहा है। मूड है भाई मूड, बस दो दिन में नहीं दो घंटे में चेंज हो सकता है, यही तो मूड होता है। और बॉलीवुड में भी कुछ ऐसा ही है, हर जनरेशन अपनी एक एनर्जी लेकर के आती है, पुरानी यादें अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन नए चेहरे उन यादों को एक नया कलर देते हैं, एक नया रंग भरते हैं उनकी जिंदगी में, जस्ट लाइक ये फ्राइडे हमारी इवनिंग में रंग भरता है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग बॉलीवुड खबर आई है, हेमा मालिनी जी ने अपने 7 साल के सिनेमैटिक सफर के मौके पर एक बहुत अमेजिंग बात कही। वो कहती है कि अगर कभी उनकी बायोपिक बनी तो आपको पता है उसमें उनकी बायोपिक में उनका रोल कौन करेगा? वो दीपिका पादुकोण होंगी जिनको वो उस रोल में देखना पसंद करेंगी। एंड ऑनेस्टली दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक लेजेंड का दूसरी जेनरेशन पर इतना ट्रस्ट होना, इट शोज हाउ सिनेमा कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल उस गाने की तरह जो मैंने आपके लिए आज शो में सबसे पहले प्ले किया था, कोई कहे कहता नहीं। यू नो हर जनरेशन का अपना एक स्टाइल होता है, अपनी एक वाइब होती है, कोई अपनी इंडिविजुअलिटी से याद रखा जाता है और कोई अपनी एलिगेंस से, और कुछ लोग दोनों जनरेशन को कनेक्ट करते हैं। बस इसी एनर्जी के साथ आज के मूड को आगे बढ़ाते हैं नो मोर ज्ञान के बाद फिलहाल दिस अमेजिंग ट्रैक जो आपके मूड को और अमेजिंग बनाएगा। एंड देन वील बी राइट बैक ये देखने के लिए कि ये जो गाना था कोई कहे कहता रहे और ऐसा क्या है जो इस गाने से लेकर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, पर इस गाने के बाद।
2: You are tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: जब फ्राइडे है तो बात फ्राइडे की होगी, राइट? और फ्राइडे बहुत टैलेंटेड है, पता है? इतने टैलेंट मैंने आपको गिना है। एक और टैलेंट बताऊं? प्लान चाहे कितनी भी बार चेंज हो जाए, एक्साइटमेंट कभी कम नहीं होती, ना ही कैंसिल होती है। कभी आपका डिनर रात से 10 हो सकता है, कभी सिर्फ एक कॉफी जो है वो हो सकता है पूरी नाइट ड्राइव बन जाए, कभी कभी कुछ प्लान्स जो होते हैं वो खिंच करके 1 से 2 दिन भी पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली हमारे बॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है जी, बस थोड़ा प्लान चेंज हो गया है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म इथा को जो लेकर के बहुत सारी न्यूज आ रही थी, उसमें एक न्यूज और जुड़ गई है कि उनके रिलीज डेट को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, वो 28 अगस्त को रिलीज नहीं होगी। मेकर्स जो है रिलीज को प्रीपोन या पोस्टपोन करने के बारे में सोच रहे हैं। अब हर कोई बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ही वेट कर रहा है, लेकिन देखा है ना कि प्लान पोस्टपोन हो सकता है लेकिन एक्साइटमेंट पोस्टपोन नहीं हो सकती। अब ये फिल्म चाहे प्रीपोन हो जाए चाहे पोस्टपोन हो जाए, एक्साइटमेंट जो इस फिल्म को लेकर के है, श्रद्धा के रोल को लेकर के, श्रद्धा के कैरेक्टर को लेकर के, वो नहीं पोस्टपोन या प्रीपोन होने वाली है। दैट्स गोना बी द सेम, वो नहीं चेंज होगी बिल्कुल फ्राइडे के प्लान्स की तरह, है ना? एंड शायद इसीलिए कोई कहीं कहता रहे, इतना रिलेटेबल लगता है। इस गाने में भी ना एक बात बहुत प्यारी है, लाइफ को हर बार परफेक्टली स्केड्यूल मत करो यार। कुछ लोग इस फिल्म में लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, पर क्या होता है, जिंदगी आपको वहीं लाके पटकती है जहाँ वो चाहती है। सो इतना परफेक्ट प्लान मत बनाओ, है ना? अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी बनाओ। तो अगर आज की इवनिंग में एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मैं कह रही हूँ और आप सोच रहे हैं कि अब क्या करें, मेक अ प्लान बी, शिफ्ट, कम ऑन। ये गाना एंजॉय करो, मिलते हैं शो के। अरे नहीं भाई, अभी सारे में बाकी है काम।
2: बर्बाद है जो गुजरा ना पल तेरे साथ है, ओ मित्र मेरे।
1: देखा, फ्राइडे के मूड में इतना खो गए कि याद ही नहीं था, अभी तो ये आर बाकी है मेरी जान।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे का एक सच बताऊं आपको, फ्राइडे को दो चीजें बहुत जल्दी एक्टिव होती हैं, वीकेंड प्लान्स और वो पुराने दोस्त उनके ग्रुप जिसमें मंडे से थर्सडे तक सिर्फ सीन दिखता है, कॉन्वर्सेशन कोई भी होता है। Hi, welcome back. This is Mugdha and ये है शो का second hour. It's Friday, भाई. काम वाम सब किनारे, बहुत सी गपशप होगी। देखो बातें तो करेंगे पर गपशप वाली। You know, friendship भी ना, वो जो daily attendance है ना, वो कभी नहीं मांगती है। कभी कभी महीनों या सालों के बाद भी अगर आप किसी से मिल रहे, कॉन्वर्सेशन वहीं से शुरू होती है जहाँ पे आपने छोड़ी होती है। ना कोई एक्सप्लेनेशन है, ना कोई फॉर्मेलिटीज है, बस एक इंस्टेंट कंफर्ट होता है। एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया हैपेंड अभी विंबलडन पे, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जूनियर जो है वो किससे मिली, लारा दत्ता से। दे रीयूनाइटेड, पता है 20 साल से ज्यादा के बाद उनकी मुलाकात हुई। मिख्या से अंदाज में काम किया उसके बाद उन्होंने इस तरह से कोई मुलाकात की। अगेन प्रियंका शेयर्ड अ पिक्चर फ्रॉम देयर मीटिंग और फैंस जो है इमीडिएटली पूरे थ्रोबैक मोड में चले गए। हाउ दिस कनेक्ट्स विद द मूवी दिल चाहता है परफेक्टली। यू नो दैट फीलिंग कि लाइफ मूव्स ऑन, शहर बदल जाते हैं, करियर बदल जाते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, लेकिन फ्रेंडशिप इज द थ्रेड जो आपको खींचकर वापस ले आती है within seconds. So before your weekend gets fully booked, maybe send that one message. Kal mil rahe hain ya phir group mein sirf memes hi bhejte rahenge? Try karke dekho. Because real friendship na, just don't always need daily conversations. Sometimes you just need one reunion and one completely unplanned

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हे हाय, फ्राइडे को नो ज्ञान नो विज्ञान, बस कुछ राइम नहीं हो रहा है। मैं हूँ मुग्धा। शुक्रवार को वैसे भी कुछ राइम नहीं होता है, सब ऐवे ही चलता है ना। वीकेंड के प्लान्स ना 7 बजे शुरू होते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि प्लान 7 बजे शुरू करने के लिए भूखे 5:30 से रहना पड़ता है, और भूख लगी जाती है यार, और उसके बाद जो हमें सामने मिलता है वो खा लेते हैं, बी चिप्स फ्राइज बर्गर, बस सब आपको आके हाय हाय हाय ऐसे कहने लग जाते हैं, फिर क्या करें, पेट मानता ही नहीं है। लेकिन अगर वीकेंड एंजॉय करना है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हेल्दी खाना छोड़ देंगे, है उसको तो रखना पड़ेगा ना आपको प्लान में अपने, ताकि पूरा हफ्ता अच्छा चल सके। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे फिर मंडे भी तो आएगा, सो ईट हेल्दी बाबा। वैसे अगर आप भी उन लोगों में हैं जो कोई भी ऑनलाइन ओटीटी देखते देखते ड्राइव पे या दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं, कचर कचर कचर, दिस इज अ वेरी स्मार्ट आइडिया फॉर यू। यू नो कृषिवल ड्राई फ्रूट्स की एक बहुत ही अमेजिंग रेंज अवेलेबल है जीजी मार्ट पे। दे हैव क्रंची कैश्यूज एंड रोस्टेड आलमंड्स एंड कैलिफोर्नियन आलमंड्स एंड पिस्टैचियोज एंड व्हाट नॉट, बहुत कुछ है, मतलब मंचिंग एंड गुडनेस, everything is together, it's farm fresh, 100% organic और sustainably packed है। तो अगर weekend पे lunch या dinner के बाद आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, problem solved, it's sorted, Gulkand try कर सकते हैं आप इनका। It has a very natural cooling effect, आपकी जो पाचन शक्ति है ना उसको इम्प्रूव करेगा। What is पाचन शक्ति, go in Google, पता लग जाएगा। और आफ्टर मील जो आपको एक स्वीट क्रेविंग होता है ना, उसका परफेक्ट जवाब है। और हाँ, अगर घर में आप शुक्रवार को पहुंच रहे हैं और आपको कोई मिल गया घर पे और आपको लगता है क्या खिलाए क्या खिलाए, यू कैन ऑलवेज ऑर्डर दिस जामुन ट्रायंगल्स, उफ दे आर अमेजिंग। वीकेंड पर ये सब चीजें ना घर में होनी चाहिए। सो दिस वीकेंड आप ना जंक का प्रेशर बिल्कुल मत लो, मेक बेटर चॉइसेस, उसका प्लेजर ले लो आप। सो जी मार्ट से ये चीजें मंगाओ और एंजॉय करो। सुन रहे हैं आप मुग्धा को, स्टे कनेक्टेड।

0: Every instrument tells a story. Every dance has a heartbeat. Every painting begins with one simple stroke. This weekend, discover the Open House 2026 by Singapore Indian Fine Arts Society and join them for a celebration of culture and creativity at Singapore's newest home for Indian arts. Enjoy live performances, hands-on workshops, interactive experiences for the whole family. And if you're joining CIFAS as a new student, you'll receive a $100 registration fee waiver. 18th and 19th July, Saturday and Sunday from 9:30 a.m. onwards at CIFAS 250-252 Middle Road, Singapore. CIFAS Open House 2026. Entry free. Register today at www.cifas.org.
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वीकेंड्स पे और क्या क्या होता है, फ्राइडे को और क्या होता है आपको पता है? प्लान वैन तो अपग्रेड होता ही है, पर्सनालिटी वो भी थोड़ी अपडेट हो जानी चाहिए, है कि नहीं? मंडे से थर्सडे तक आपका फॉर्मल वर्जन, फ्राइडे इवनिंग में ओरिजिनल अवतार। हाँ जी, वही तो मजा है। कभी जीन्स की जगह शॉर्ट्स पहन लो, कभी कॉफी की जगह जरा मॉकटेल लगा लो, और कभी घर जा रहा हूँ की जगह पे बोल दो चल यार एक स्टॉप मार के आते। एंड ये हम सिर्फ नहीं करते, स्टार्स भी ऐसे करते हैं। यू नो टॉम क्रूज को देख लो, इतने सालों के बाद भी उन्होंने उनकी अपकमिंग फिल्म डिगर के लिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया भाई कि ट्रेलर देख करके लिटरली लोग दो बार देख रहे हैं कौन है ये टॉम क्रूज है ना भैया, ये टॉम क्रूज तो नहीं हो सकते। यू नो वॉट, समटाइम्स द बिगेस्ट स्टार्स आर द वंस हु आर स्टिल रेडी टू री इन्वेंट देमसेल्व्स, और कुछ तो ऐसे जिनको देखे आप कभी कभी बिल्कुल नहीं पहचान सकते। एंड शायद दिस इज वाई कोई कहे कहता रहे अंदर जाता है, दिस इज समथिंग वो इतने रिलेटेबल लगते हैं, बिकॉज ये आपको आपका कई सारा वर्जन दिखाते हैं, वो ये बताते हैं। दिस फिल्म ऑल्सो इट टेल्स कि आप हमेशा ऐसे नहीं होते हैं, आप बदलते हैं, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज वाई यू हैव टू रिलेट विद एवरी वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो दिस वीकेंड जस्ट डोंट चेंज योर प्लान्स, चेंज योर वाई। यहाँ पे तो सारे बदले थे ना, कोई ट्रक पे बैठा था, किसी ने पेंटिंग को सेलेक्ट करने के बाद किसी और को भी सेलेक्ट किया था, और किसी को जिंदगी की सच्चाई समझ में आ गई थी। सो

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
7: Good morning!
8: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
9: फ्राइडे इवनिंग, और किसी किसी की लाइफ में फ्राइडे इवनिंग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या होता है? वन पर्सन वांट्स फूड, एक को शॉपिंग चाहिए होती है, वन वांट्स सम लाइव परफॉर्मेंसेस एंड अदर वन वो बस पूछता रहता है पार्किंग मिल जाएगी ना, जहां भी जा रहे पार्किंग मिल जाएगी ना। अरे यार, अरे सच अ दिल चाहता है मोमेंट मैन, डिफरेंट पीपल डिफरेंट चॉइसेस, बट समहाउ वन प्लान दैट वर्क्स फॉर एवरीवन इज हियर विद मी एंड दिस वीकेंड दैट वन प्लान इज विद मी। मेरे पास है जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो जो की हो रहा है हॉल 5A सिंगापुर में सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक 16th, 17th, 18th and 19th of July. You have fashion, food, jewelry, auctions, cultural programs, competitions, live performances of course aur bahut bahut bahut kuch. And the best part is aapko koi entry fee bhi nahi deni hai. And visitors, kabhi bhi register kar lo for daily chances. Aap jeet sakte hain tickets to your dream destinations. Something like Bangkok and Langkawi and many other. So, apne Akash Samir Siddharth ko collect karo, ikattha karo. And one can shop, one can eat, and a third one can just pretend they came only for the cultural program, right? Sun rahe aap Mugdha ko.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, फ्राइडे नाइट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है पता है? मैसेज करूं या वेट करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। वैसे कंफ्यूजन ना सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, ये सब के साथ होता है, बी इट बॉलीवुड और बी इट हॉलीवुड। हेलो, वेलकम बैक। शो के थर्ड एंड लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है आप सबको शुक्रवार शुरू करने की बहुत जल्दी है, बट इट्स ओके, मैं जाऊंगी तभी शुक्रवार शुरू होगा। वैसे मैं क्या बात कर रही थी, हाँ आपको पता है निक जोनस ने रिसेंटली रिवील किया कि लगभग 10 साल पहले उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को पहला डीएम भेजा था। वो कोई फिल्म में डायलॉग नहीं था, कोई ड्रामेटिक प्रपोजल नहीं था, बस एक सिंपल सा मैसेज था, और वही एक मैसेज आज एक ब्यूटीफुल जर्नी की स्टार्टिंग बन गया। देखा, कभी कभी ना लाइफ को बहुत बड़ा ट्विस्ट देने के लिए किसी ब्लॉकबस्टर एंट्री की जरूरत नहीं होती है रे, एक छोटा सा स्टेप वही काफी होता है। एंड शायद दैट्स व्हाई मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है जो मैं अभी आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। दैट्स बी लाइक एन एंकर फॉर मी इस पूरे घंटे में आपके साथ। इस गाने की वाइब है ही कुछ ऐसी, कुछ कनेक्शंस एक्सप्लेन नहीं होते हैं ना किए जा सकते हैं, बस हो जाते हैं, बन जाते हैं। कब, कैसे, क्यों, उसका जवाब ना तो मेरे पास है ना आपके पास, किसी के पास भी नहीं होता है। तो अगर आज फ्राइडे नाइट किसी पुराने दोस्त को मैसेज करने का मन है या किसी को बस हाँ ही बोलने का मन है, तो ज्यादा कैलकुलेशन में मत पड़िए। क्या पता एक सिंपल नोटिफिकेशन आज आपकी बेस्ट मेमोरी बन जाए।

नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: एवरी इंस्ट्रूमेंट टेल्स अ स्टोरी, एवरी डांस हैज अ हार्टबीट, every painting begins with one simple stroke. This weekend, discover the Open House 2026 by Singapore Indian Fine Arts Society and join them for a celebration of culture and creativity at Singapore's newest home for Indian arts. Enjoy live performances, hands-on workshops, interactive experiences for the whole family. And if you're joining CIFAS as a new student, you'll receive a $100 registration fee waiver. 18th and 19th July, Saturday and Sunday from 9:30 a.m. onwards at CIFAS 250252 Middle Road, Singapore. CIFAS Open House 2026. Entry free. Register today at www.cifas.org.
2: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
3: हाय, वेलकम बैक। मुग्धा तिरकिधा को आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट 2.0 पर, और फ्राइडे फीवर है भाई। हाँ, तो थोड़ा बुखार मुझे भी चढ़ गया फ्राइडे फीवर का। सो व्हाट, फ्राइडे को ना हम सब थोड़ा फिल्मी हो ही जाते हैं, क्या करें, फ्राइडे दिन ही ऐसा लगता है। बॉलीवुड में रिलीजेज हो जाती है, फ्राइडे को वीकेंड हो जाता है तो फिल्मी होना बनता है। कोई सनग्लासेस शाम में पहन लेता है और कार में हीरो वाली एंट्री कर लेता है, कोई बस प्लेलिस्ट को बहुत लाउड कर लेता है, कोई खुद को मूवी का हीरो ही समझ लेता है, क्या करें। बिकॉज बॉलीवुड हमें सिर्फ स्टोरीज नहीं देता है, वो हमें लुक्स देता है, स्टेप्स देता है, डायलॉग्स देता है, और कभी कभी फैशन भी देता है जी। सलमान खान का एक गाना है, ओ ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, याद है? अरे कैसे नहीं याद होगा भाई साहब, 28 साल हो गए इस गाने को, 28 इयर्स पुराना है, भगवान मैं बुढ़ी हो गई हूँ। पर उसका स्वैग जो है ना, वो अभी भी एकदम फ्रेश है। अभी रिसेंट कुछ मेमोरीज शेयर हुई, उसमें पता लगा कि उस सॉन्ग के बाद ना रग जीन्स, रिप जीन्स फुल फैशन स्टेटमेंट बन गया। एंड यही तो है बॉलीवुड का मैजिक, एक गाना जो है वो आता है, अवतरित होता है, लोग उसको सिर्फ सुनते नहीं है, उसको पहनते हैं, कॉपी करते हैं, डांस करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। ये गाना कितने लड़कों ने बजाया होगा अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए, ढूंढे तुझे दीवाना, रग जीन्स पहनी है, शर्टलेस है, टी शर्ट भी नहीं है, गिटार बजाने को अभी सीख लिया भाई, कि कैसे करें इम्प्रेस, ऐसे कर लेंगे। तो जी यही तो है बॉलीवुड, मेमोरीज जुड़ जाती हैं, एंड दिस इज व्हाई जाने क्यों के साथ ये मैच होता है। कुछ चीजें हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बस उनसे प्यार हो जाता है।

0: when you shake that thing, you really make the bell ring and they go ring ding ding.
1: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: वीकेंड आते आते हम सबके अंदर का मोटिवेशनल स्पीकर जाग जाता है। मंडे से जिम जाएंगे, अगले मंथ से डाइट करेंगे, कभी ना कभी अपना पैशन जरूर फॉलो करेंगे। करेंगे भाई, करेंगे। और फिर मंडे आता है और वो पैशन स्नूज मोड पे चला जाता है। पर ऑनेस्टली इट्स नेवर टू लेट यार। कभी कभी बस एक डिसीजन चाहिए होता है, द स्ट्रॉन्ग वन। वैसे अगर आप भी कभी सोचते रहे ना कि यार मेरी आवाज तो बड़ी अच्छी है यार, मुझे भी उधर माइक के उधर जाना है, मुझे आरजे बनना है, बचपन का सपना था, तो माइक्रोफोन के पीछे खड़े होने का एक्साइटमेंट फील करो, इधर आओ। दिस मे बी योर साइन। द आरजे एकेडमी बाय मस्ती मीडिया नेटवर्क हैज एक्चुअली ओपन्ड अपने एडमिशंस। अ वेरी फ्लेक्सिबल हाइब्रिड प्रोग्राम है हमारा, और 14 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए इट्स ओपन। बिगिनर से एडवांस लेवल तक का ट्रेनिंग स्केड्यूल है, इंडिविजुअल फोकस सेशंस है, एंड जो सिलेक्टेड ट्रेनीज होंगे ना उनको रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर शो होस्ट करने का मौका मिलेगा। यस, एक्चुअली है ना सपने एक्सपायरी डेट लेकर नहीं आते, बट स्टिल उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, info@radiomasti.go.in पर अपना एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन लिखकर मेल करना है। After that mail, we will decide. जाने क्यों लोग इधर आते हैं, जाने क्यों लोग आ नहीं पाते हैं, जाने क्यों, हम देख लेंगे।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
4: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
5: ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
6: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
7: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेल, 3 घंटे कब खत्म हो गए पता ही नहीं लगा। ऑनेस्टली पता नहीं लगा, मुझे तो इधर नहीं लगा। कभी कभी ना म्यूजिक जो है वो मूड को लिफ्ट करता है, कभी फिल्मी बातें जो आपके फेस पे स्माइल लेकर आती हैं, और कभी बस एक कोई लाइन होती है उसने याद दिला दिया होता है कि लाइफ को हर वक्त इतना सीरियसली नहीं लेना होता है, कोई जरूरत ही नहीं है। वीकेंड ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और अब ये आपका है। तो प्लान्स हो या नो प्लान्स हो, फ्रेंड्स के साथ हो या अपने कंफर्ट जोन में हो, डजंट मैटर। अपना मूड अच्छा रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेलिस्ट को लाउड रखो, स्लो रखो, ढिंचाक रखो, कैसा भी रखो, आप इंजॉय करो। आपका कंफर्ट और आपकी खुशी जरूरी है, बस मस्ती जरूर रखना, मस्ती हैंगआउट की तरह। दिस इज मी आरजे मुग्धा और ये मस्ती हैंगआउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आपसे यही इजाजत लेता है फिलहाल अभी के लिए। बाय बाय, टाटा। और हाँ, मंडे की टेंशन ना संडे रात से पहले बिल्कुल मत लेना, बिकॉज मंडे को तो मैया ही जाएगी इधर बात करने के लिए। सो keep vibing, keep smiling, and I'll catch you again very soon, like on Monday. Okay, bye-bye.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: जाइए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: Check it out. Coca-Cola,
1: तो तेरे सिर च जूं।
0: Anyways, हजरात अर्ज किया।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो।
3: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सिर्फ वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल. इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: सप्ताह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live pen.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
0: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

घर पे नहीं रहना, आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी, नहीं आज मुझे दुनिया की सुननी, मुझे तो है बस अपनी ही करनी।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: रात अकेली है तो क्या हम तो

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
0: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो

बंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

चिल्लाएगा, अरे टाइपिस्ट हंसेगी और चपरासी गाएगा, अरे भेजा घूम जाएगा, एस्प्रिन खाएगा और फिर घर की याद आते ही सिहर सिहर रह जाएगा। 5 बजे ये बाहर आकर साड़ी के दुकान पे जाकर 4 साड़ियों को बदलवा कर रुपए को उधार करवा कर हारे हुए जुआरी जैसा बिन डुकडुकी मदारी जैसा तेरे सामने आएगा, अरे बिना बात मुस्काएगा, फिर होटल ले जाएगा।

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.